0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव जीवन में भोज का एक महत्वपूर्ण अर्थ और स्थान है। मानव के जीवन में कोई भी भोज कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करता है, जिसमें हम आनंद और खुशी के भाव को पाते हैं। अतः कोई भी भोज का तात्पर्य हृदय के उद्गार मनोभावों को प्रकट करने से जुड़ा है, जहां हम उन लोगों को अपने इर्द गिर्द शामिल करने की चाह रखते हैं, जिनके संग हम प्रेमपूर्ण संबंध में जुड़े हुए हैं। इस भांति कोई भी भोज व्यक्ति को अपने प्रियजनों और अपने हितैषियों के संग न केवल शारीरिक रूप में पोषित करता है, बल्कि यह दोनों पक्षों को भौतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप में प्रेम के गहरे सूत्र में पिरोता है, जहां मानव जीवन के आनंद का अनुभव करता है। श्रोताओं, वर्ष के 28वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम भोज को केंद्रीय विषय वस्तु स्वरूप पाते हैं, जिसके लिए ईश्वर की ओर से हमें भी निमंत्रण दिया जाता है। जीवन दाता ईश्वर हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि ईश्वर के भोज में शामिल होने का अर्थ हमारे लिए क्या है। ईश्वरीय पुत्र के भोज में शामिल होने हेतु हमसे किन किन बातों की तैयारी करने की मांग की जाती है। हम किस मनोभाव से पुत्र के विवाह भोज में अपने को शामिल करते हैं।
1: यीशु नेताओं और फरीसियों को दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए, और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में उस ईश्वरीय आनंद को अनुभव करने में मदद करे, जिसके लिए पिता हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, नबी इसाइस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए ईश्वर के द्वारा एक भोज का प्रबंध किए जाने की बात कहता है। उस भोज पर वे सारी चीजें उपलब्ध होंगी जिसकी कामना हम किसी भोज में शरीक होने पर करते हैं, स्वादिष्ट भोजन, मांस, अंगूरी इत्यादि। यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता को व्यक्त करता है, जहां वे दुनिया के सारे लोगों, सारी मानव जाति को अपने पास आने और अपने आनंद में, अपनी खुशी में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। वैसे ही जैसे कि हम भोज देने पर अपने प्रिय जनों को अपनी खुशी में शामिल होने को बुलाते हैं, हमारे निमंत्रण में शायद हमारे कुछ स्वार्थ की भावनाएं होती होंगी, लेकिन ईश्वर के निमंत्रण में हम उनकी निस्वार्थ भावना को पाते हैं। ईश्वर के निमंत्रण में हम उन्हें अपने पास आने वालों के जीवन से दुख और उनके सारे आंसुओं को पोंछता हुआ पाते हैं। वे उनके बीच से मृत्यु और उनके सारे शोक को दूर करने की बात कहते हैं। ईश्वर के पर्वत पर उनके पास आने वालों, उनके संग भोज में शामिल होने वालों को मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर के भोज में अपने को लाते हुए हम अपने को उन बातों से भरा और पोषित पाते हैं जिनकी चाह और आशा हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो दुनिया में हमारे भौतिक जीवन को सुगम बनाता है। श्रोताओं, इसे हम आज के दूसरे पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में सुनते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर की कृपा हमारे लिए सदैव उपलब्ध है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस रूप में ग्रहण करने को आते हैं। उनकी कृपा की बदौलत हम उन सारी चीजों को सहज ही पूरा करने के योग्य होते हैं जिन्हें हमें पूरा करने की मांग की जाती है। अतः हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें क्यों ना हो, हम अपने में कितने भी टूटे और बिखरे हुए क्यों ना हो, ईश्वर के सहचर्य जो सदैव हमारे संग बना रहता है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति और साहस से भर देता है। और यही कारण है कि ईश्वर हमें अपने पास अपने बेटे के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने स्वर्ग के राजा ईश्वर के पुत्र के विवाह भोज में अतिथियों को निमंत्रण दिए जाने की बात सुनी, लेकिन जिन्हें निमंत्रण दिया गया उन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि निमंत्रण देने वालों की बुराई की, उन्हें मारा पीटा और उनका अपमान भी किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार का संदर्भ यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि पिता ईश्वर हमें रोज दिन अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। हम में से हर किसी को यह निमंत्रण हर दिन मिलता है, लेकिन अपने में खोए रहने के कारण हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। कितनी बार हम उनके निमंत्रण को पहचान नहीं पाते और सहज ही बहाना बनाते हुए उसे अस्वीकार करते हैं। हमें अपने में ही खोया रहना अच्छा लगता है, अतः हम अपने ही लेन देन में व्यस्त कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपने को उन चीजों से वंचित पाते हैं जो हमें उनकी ओर से मिलने वाली होती है। वहीं बेटे के विवाह भोज में शामिल होना हमें अपने में कुछ तैयारी करने का आह्वान करता है, वैसे ही जैसे कि हम किसी भोज में साफ सुथरे और अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं। यह हमें ईश्वर के मनोभावों को अपने में धारण करने का आह्वान करता है, जैसे कि नम्रता, करुणा, प्रेम के भाव जो हमारे दैनिक जीवन के हमारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। आइए हम स्वयं पुत्र यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने भोज में सहभागी होने के रहस्य को जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम उनकी चाह और योजना के अनुरूप अपने को तैयार करते हुए उनके पास आ सकें, जो हमें भोज में सहभागी होने की सच्ची खुशी और आनंद से भर देता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ग्रीक मेलकाइट धर्म सभा के धर्म अध्यक्षों से मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने उन्हें मेल मिलाप के गवाह बनने और हिंसा से प्रभावित भूमि में साम्य के बीज के रूप में सेवा हेतु आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें ने शनिवार को अंतियोक के ग्रीक मेलकाइट कलीसिया के धर्म अध्यक्षों की धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने याद दिलाया कि अंतियोक में ही यीशु ख्रिस्त के शिष्यों को पहली बार ख्रिस्ते कहा गया था और कहा कि हमें आज भी अपना जीवन इसी तरह जीने के लिए बुलाया गया है जो हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति का सबूत है। उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आप विश्वास को सिर्फ अपने मन में नहीं रखते बल्कि इसे अपने दिल में उतरने देते हैं। आत्मा से प्रेरित होकर भूखों के साथ खाना बांटते, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल करते, दुखियों का साथ देते और उन्हें सांत्वना देते हैं। कलीसिया को एक रोशनी की किरण ख्रिस्त की ज्योति बनने देते हैं, खासकर इस मुश्किल समय में। पोप ने याद किया कि कई इलाके जहां ग्रीक मेलकाइट कलीसिया मौजूद है वे युद्ध, अशांति, धार्मिक कट्टरता एवं आर्थिक तंगी से घिरे हैं। उनकी मुश्किलों और ख्रिस्त की तरह बनने की चाहत के बीच पोप ने ग्रीक मेलकाइट कार्तिक विश्वासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया एवं पूरी कार्तिक कलीसिया की एकजुटता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, मैं खास रूप से उन जख्मों और मुश्किलों के बारे सोचता हूँ जिनका आप सामना करते हैं, जो आपके कई विश्वासियों को दूर देशों की यात्रा करने, काम खोजने, खतरों और कभी कभी जुल्म से बचने और अपने परिवारों की सुरक्षित भरण पोषण हेतु प्रेरित करती है। पोप ने उनका आह्वान करते हुए कहा, आपकी कलीसिया का एक बड़ा आह्वान है लड़ाई से तबाह देशों में मेल मिलाप और शांति के गवाह बनना। आप हिंसा से जख्मी देशों में मेल मिलाप के बीच हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीक मेलकाइट सिनेट मेल मिलाप के रखवाले के रूप में काम करता है जो विश्वासियों को एकजुटता के लिए कोशिश करने हेतु मदद करता है ताकि सभी लोग इसमें ख्रिस्त को पहचान सकें। और उन्हें सावधान करते हुए कहा, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरों से ऊपर उठने, सेवा के बजाय सत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी के बजाय फायदा और प्रेरिताई की देखभाल के बजाय व्यक्तिगत सफलता पाने के लालच में ना पड़ें। इस बात पर गौर करते हुए कि पुरोहित साक्ष्य देने की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब गुस्सा और डर का एहसास होता है, जो एक दर्द भरा पल है, हम इसी में प्यार दिखाने की कोशिश करके अपने विश्वास एवं सुसमाचार को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, हमने पूरे इतिहास में देखा है कि हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं, चाहे वह शहादत हो या अपने पड़ोसियों के लिए प्यार से किए गए छोटे मोटे त्याग, हमें अपने विश्वास को इस तरह दिखाने का मौका देते हैं उन लोगों के दिलों में गूंजता है जो सच्ची शांति चाहते हैं। अंत में संत पापा ने मध्य पूर्व में कार्तिक शिक्षा का समर्थन करने की वैटिकन की इच्छा जाहिर की और सीरिया, लेबनान एवं इराक में विश्वासियों के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप के लिए अपने समर्थन को याद किया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद युवाओं का समर्थन करना है ताकि ख्रिस्ते परिवारों को मध्य पूर्व में रहने और ख्रिस्ते पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक मदद मिल सके। पोप लियो 14वें ने महाधर्मदक्ष विक्टोरियो फ्रांचेस्को वियोला ओएफएम को वैटिकन में संत पेत्रस महागिरजाघर के महापुरोहित, वैटिकन सिटी में पोप के विकर जनरल और संत पेत्रस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पोप ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में इस नियुक्ति की घोषणा की। महाधर्मदक्ष वियोला पहले दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित विभाग के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। 4 अक्टूबर 1965 को इटली के वियेला में जन्मे महाधर्मदक्ष ने 1991 में फ्रायर्स माइनर में मन्नत ग्रहण किया था और 1993 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। उन्होंने रोम के संत अनसेल्मो परमधम पीठे धर्म विधिक इंस्टीट्यूट से सेक्रेट लिटर्जी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और 2021 में विभाग के सचिव बनने से पहले वे 2014 में तोर्तोना के धर्मदक्ष नियुक्त हुए थे। पोप लियो 14वें ने कार्तिक कलीसिया में मौत की सजा का बहिष्कार करने की बात को पुनः दोहराया है और याद दिलाया है कि आम हित को बिना मौत की सजा दिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
पोप लियो चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कार्तिक कलीसिया मौत की सजा को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यह मानव की पवित्रता और गरिमा पर हमला है। शनिवार को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस पर प्रकाशित एक पोस्ट में पोप ने कहा कि मौत की सजा पर भरोसा किए बिना न्याय को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराधियों को असरदार तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि दोषियों को छुटकारे की संभावना भी दी जा सकती है। अमेरिका में सार्वजनिक फांसी पर कार्डिनल परोलिन ने कहा है कि मौत को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। रोम में जॉन हेनरी न्यूमन पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने अमेरिका में निदाल हसन की फांसी का लाइव प्रसारण करने की योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौत को तमाशा बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, यह सच में समझ से बाहर है कि आज के जमाने में कोई इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहेगा। मुझे नहीं पता कि किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है। मौत को तमाशा बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो, दूसरे तरीके भी हैं। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने यह टिप्पणी पेंटागन के उस फैसले पर की है जिसमें 2009 के फोर्ट हुड हत्याकांड के दोषी पूर्व आर्मी मेजर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा फांसी देने का लाइव प्रसारण किया जाना है। कार्डिनल ने दोहराया, कलीसिया का दृष्टिकोण मौत की सजा के पूरी तरह खिलाफ है। यह मानव गरिमा के विरुद्ध है और यह निवारक का काम नहीं करता। इस बीच कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वे 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे की जगह लेंगे। सुसमाचार प्रचार विभाग में प्रथम सुसमाचार प्रचार और नए स्थानीय कलीसियाओं के अनुभाग के प्रो प्रीफेक्ट कार्डिनल तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक कार्डिनल मंडल का नेतृत्व करीब 7 साल करने के बाद 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे डीन पद छोड़ रहे हैं। उनकी जगह 69 वर्षीय फिलिपिनी कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले लेंगे। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष पद को पोप फ्रांसिस ने 2019 में मोतु प्रोप्रियो एक नवाचार के माध्यम से शुरू किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव जीवन में भोज का एक महत्वपूर्ण अर्थ और स्थान है। मानव के जीवन में कोई भी भोज कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करता है, जिसमें हम आनंद और खुशी के भाव को पाते हैं। अतः कोई भी भोज का तात्पर्य हृदय के उद्गार मनोभावों को प्रकट करने से जुड़ा है, जहां हम उन लोगों को अपने इर्द गिर्द शामिल करने की चाह रखते हैं, जिनके संग हम प्रेमपूर्ण संबंध में जुड़े हुए हैं। इस भांति कोई भी भोज व्यक्ति को अपने प्रियजनों और अपने हितैषियों के संग न केवल शारीरिक रूप में पोषित करता है, बल्कि यह दोनों पक्षों को भौतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप में प्रेम के गहरे सूत्र में पिरोता है, जहां मानव जीवन के आनंद का अनुभव करता है। श्रोताओं, वर्ष के 28वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम भोज को केंद्रीय विषय वस्तु स्वरूप पाते हैं, जिसके लिए ईश्वर की ओर से हमें भी निमंत्रण दिया जाता है। जीवनदाता ईश्वर हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि ईश्वर के भोज में शामिल होने का अर्थ हमारे लिए क्या है। ईश्वरीय पुत्र के भोज में शामिल होने हेतु हमसे किन किन बातों की तैयारी करने की मांग की जाती है। हम किस मनोभाव से पुत्र के विवाह भोज में अपने को शामिल करते हैं।
1: यीशु नेताओं और फरीसियों को दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए, और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में उस ईश्वरीय आनंद को अनुभव करने में मदद करी, जिसके लिए पिता हमें अपने पुत्र के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए ईश्वर के द्वारा एक भोज का प्रबंध किए जाने की बात कहता है। उस भोज पर वे सारी चीजें उपलब्ध होंगी जिसकी कामना हम किसी भोज में शरीक होने पर करते हैं, स्वादिष्ट भोजन, मांस, अंगूरी इत्यादि। यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता को व्यक्त करता है, जहां वे दुनिया के सारे लोगों, सारी मानव जाति को अपने पास आने और अपने आनंद में, अपनी खुशी में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। वैसे ही जैसे कि हम भोज देने पर अपने प्रियजनों को अपनी खुशी में शामिल होने को बुलाते हैं, हमारे निमंत्रण में शायद हमारी कुछ स्वार्थ की भावनाएं होती होंगी, लेकिन ईश्वर के निमंत्रण में हम उनके निस्वार्थ भावना को पाते हैं। ईश्वर के निमंत्रण में हम उन्हें अपने पास आने वालों के जीवन से दुख और उनके सारे आंसुओं को पोंछता हुआ पाते हैं। वे उनके बीच से मृत्यु और उनके सारे शोक को दूर करने की बात कहते हैं। ईश्वर के पर्वत पर उनके पास आने वालों, उनके संग भोज में शामिल होने वालों को मुक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर के भोज में अपने को लाते हुए हम अपने को उन बातों से भरा और पोषित पाते हैं जिनकी चाह और आशा हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो दुनिया में हमारे भौतिक जीवन को सुगम बनाता है। श्रोताओं, इसे हम आज के दूसरे पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में सुनते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर की कृपा हमारे लिए सदैव उपलब्ध है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस रूप में ग्रहण करने को आते हैं। उनकी कृपा की बदौलत हम उन सारी चीजों को सहज ही पूरा करने के योग्य होते हैं जिन्हें हमें पूरा करने की मांग की जाती है। अतः हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें क्यों ना हो, हम अपने में कितने भी टूटे और बिखरे हुए क्यों ना हो, ईश्वर के सहचर्य जो सदैव हमारे संग बना रहता है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति और साहस से भर देता है। और यही कारण है कि ईश्वर हमें अपने पास अपने बेटे के भोज में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने स्वर्ग के राजा ईश्वर के पुत्र के विवाह भोज में अतिथियों को निमंत्रण दिए जाने की बात सुनी, लेकिन जिन्हें निमंत्रण दिया गया उन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि निमंत्रण देने वालों की बुराई की, उन्हें मारा पीटा और उनका अपमान भी किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार का संदर्भ यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि पिता ईश्वर हमें रोज दिन अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के जीवनदायी भोज में शामिल होने को बुलाते हैं। हम में से हर किसी को यह निमंत्रण हर दिन मिलता है, लेकिन अपने में खोए रहने के कारण हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। कितनी बार हम उनके निमंत्रण को पहचान नहीं पाते और सहज ही बहाना बनाते हुए उसे अस्वीकार करते हैं। हमें अपने में ही खोया रहना अच्छा लगता है, अतः हम अपने ही लेन देन में व्यस्त कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपने को उन चीजों से वंचित पाते हैं जो हमें उनकी ओर से मिलने वाली होती है। वहीं बेटे के विवाह भोज में शामिल होना हमें अपने में कुछ तैयारी करने का आह्वान करता है, वैसे ही जैसे कि हम किसी भोज में साफ सुथरे और अच्छे वस्त्र पहनकर जाते हैं। यह हमें ईश्वर के मनोभावों को अपने में धारण करने का आह्वान करता है, जैसे कि नम्रता, करुणा, प्रेम के भाव जो हमारे दैनिक जीवन के हमारे कार्यों और व्यवहार में झलकता है। आइए हम स्वयं पुत्र यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने भोज में सहभागी होने के रहस्य को जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम उनकी चाह और योजना के अनुरूप अपने को तैयार करते हुए उनके पास आ सकें, जो हमें भोज में सहभागी होने की सच्ची खुशी और आनंद से भर देता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ग्रीक मेलकाइट धर्म सभा के धर्माध्यक्षों से मुलाकात करते हुए पोप लियो चौदहवें ने उन्हें मेल मिलाप के गवाह बनने और हिंसा से प्रभावित भूमि में साम्य के बीज के रूप में सेवा हेतु आमंत्रित किया। पोप लियो चौदहवें ने शनिवार को अंतियो के ग्रीक मेलकाइट कलीसिया के धर्माध्यक्षों की धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने याद दिलाया कि अंतियोक में ही यीशु ख्रिस्त के शिष्यों को पहली बार ख्रिस्ते कहा गया था और कहा कि हमें आज भी अपना जीवन इसी तरह जीने के लिए बुलाया गया है, जो हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति का सबूत है। उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आप विश्वास को सिर्फ अपने मन में नहीं रखते बल्कि इसे अपने दिल में उतरने देते हैं। आत्मा से प्रेरित होकर भूखों के साथ खाना बांटते, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल करते, दुखियों का साथ देते और उन्हें सांत्वना देते हैं। कलीसिया को एक रोशनी की किरण ख्रिस्त की ज्योति बनने देते हैं, खासकर इस मुश्किल समय में। पोप ने याद किया कि कई इलाके जहां ग्रीक मेलकाइट कलीसिया मौजूद है, वे युद्ध, अशांति, धार्मिक कट्टरता एवं आर्थिक तंगी से घिरे हैं। उनकी मुश्किलों और ख्रिस्त की तरह बनने की चाहत के बीच पोप ने ग्रीक मेलकाइट कार्तिक विश्वासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया एवं पूरी कार्तिक कलीसिया की एकजुटता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, मैं खास रूप से उन जख्मों और मुश्किलों के बारे सोचता हूँ जिनका आप सामना करते हैं, जो आपके कई विश्वासियों को दूर देशों की यात्रा करने, काम खोजने, खतरों और कभी कभी जुल्म से बचने और अपने परिवारों की सुरक्षित भरण पोषण हेतु प्रेरित करती है। पोप ने उनका आह्वान करते हुए कहा, आपकी कलीसिया का एक बड़ा आह्वान है लड़ाई से तबाह देशों में मेल मिलाप और शांति के गवाह बनना। आप हिंसा से जख्मी देशों में मेल मिलाप के बीच हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीक मेलकाइट सिनेट मेल मिलाप के रखवाले के रूप में काम करता है, जो विश्वासों को एकजुटता के लिए कोशिश करने हेतु मदद करता है ताकि सभी लोग इसमें ख्रिस्त को पहचान सकें। और उन्हें सावधान करते हुए कहा, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरों से ऊपर उठने, सेवा के बजाय सत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी के बजाय फायदा और प्रेरिताई की देखभाल के बजाय व्यक्तिगत सफलता पाने के लालच में ना पड़ें। इस बात पर गौर करते हुए कि पुरोहित साक्ष्य देने की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब गुस्सा और डर का एहसास होता है, जो एक दर्द भरा पल है, हम इसी में प्यार दिखाने की कोशिश करके अपने विश्वास एवं सुसमाचार को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, हमने पूरे इतिहास में देखा है कि हम जिन मुश्किलों का सामना करते हैं, चाहे वह शहादत हो या अपने पड़ोसियों के लिए प्यार से किए गए छोटे मोटे त्याग, हमें अपने विश्वास को इस तरह दिखाने का मौका देते हैं, उन लोगों के दिलों में गूंजता है जो सच्ची शांति चाहते हैं। अंत में संत पापा ने मध्य पूर्व में कार्तिक शिक्षा का समर्थन करने की वैटिकन की इच्छा जाहिर की और सीरिया, लेबनान एवं इराक में विश्वासियों के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप के लिए अपने समर्थन को याद किया। उन्होंने कहा, हमारा मकसद युवाओं का समर्थन करना है ताकि ख्रिस्ते परिवारों को मध्य पूर्व में रहने और ख्रिस्ते पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक मदद मिल सके। पोप लियो चौथवें ने महाधर्माध्यक्ष विक्टोरियो फ्रांचेस्को वियोला ओएफएम को वैटिकन में संत पेत्रस महागिरजाघर के महापुरोहित, वैटिकन सिटी में पोप के विकर जनरल और संत पेत्रस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पोप ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में इस नियुक्ति की घोषणा की। महाधर्माध्यक्ष वियोला पहले दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुशासन के लिए गठित विभाग के सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। 4 अक्टूबर 1965 को इटली के वियेला में जन्मे महाधर्माध्यक्ष ने 1991 में फ्रायर्स माइनर में मन्नत ग्रहण किया था और 1993 में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। उन्होंने रोम के संत अनसेल्मो परमधम पीठे धर्म विधिक इंस्टीट्यूट से सेक्रेट लिटर्जी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और 2021 में विभाग के सचिव बनने से पहले वे 2014 में तोर्तोना के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए थे। पोप लियो चौदहवें ने कार्तिक कलीसिया में मौत की सजा का बहिष्कार करने की बात को पुनः दोहराया है और याद दिलाया है कि आम हित को बिना मौत की सजा दिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
पोप लियो चौथवे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि कार्तिक कलीसिया मौत की सजा को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यह मानव की पवित्रता और गरिमा पर हमला है। शनिवार को मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस पर प्रकाशित एक पोस्ट में पोप ने कहा कि मौत की सजा पर भरोसा किए बिना न्याय को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराधियों को असरदार तरीके से हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि दोषियों को छुटकारे की संभावना भी दी जा सकती है। अमेरिका में सार्वजनिक फांसी पर कार्डिनल परोलिन ने कहा है कि मौत को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। रोम में जॉन हेनरी न्यूमन पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने अमेरिका में निदाल हसन की फांसी का लाइव प्रसारण करने की योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मौत को तमाशा बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, यह सच में समझ से बाहर है कि आज के जमाने में कोई इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहेगा। मुझे नहीं पता कि किस मकसद से ऐसा किया जा रहा है। मौत को तमाशा बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कोई कितना भी दोषी क्यों ना हो, दूसरे तरीके भी हैं। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने यह टिप्पणी पेंटागन के उस फैसले पर की है जिसमें 2009 के फोर्ट हुड हत्याकांड के दोषी पूर्व आर्मी मेजर निदाल हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा फांसी देने का लाइव प्रसारण किया जाना है। कार्डिनल ने दोहराया, कलीसिया का दृष्टिकोण मौत की सजा के पूरी तरह खिलाफ है। यह मानव गरिमा के विरुद्ध है और यह निवारक का काम नहीं करता। इस बीच कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वे 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे की जगह लेंगे। सुसमाचार प्रचार विभाग में प्रथम सुसमाचार प्रचार और नए स्थानीय कलीसियाओं के अनुभाग के प्रोप्रिफेक्ट कार्डिनल तागले कार्डिनल मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। दुनिया की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक कार्डिनल मंडल का नेतृत्व करीब 7 साल करने के बाद 92 वर्षीय कार्डिनल जुआनी बत्तीस्ता रे डीन पद छोड़ रहे हैं। उनकी जगह 69 वर्षीय फिलिपिनी कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले लेंगे। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष पद को पोप फ्रांसिस ने 2019 में मोतु प्रोप्रियो एक नवाचार के माध्यम से शुरू किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
0: प्रेरितों का धर्मसार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: पृथ्वी और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया।

0: प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

श्रोता और रविवारे कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी एवं पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा और धनी आबादी वाला शहर है, जो अपने प्राचीन इतिहास, अनूठी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद इस महानगर में कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे सड़कों पर भेदभाव, गरीबी, अलग थलग किया जाना और व्यवस्थित हिंसा, जो आबादी के एक बड़े हिस्से पर असर डालती है। जहां सड़कों पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति में पड़ गई हैं। इनमें से हर एक की अपनी मुश्किल कहानियाँ हैं, जैसे हिंसा का शिकार होना, अकेले छोड़ दिया जाना, अवसर की कमी और कम उम्र में ही परिवार से अलग कर दिया जाना। इन महिलाओं की मदद करने के विचार से परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनें दिन और रात अपने मिशन की जोखिम उठाते हुए सड़कों पर निकलती हैं। उनका काम है साथ चलना, सुनना, साथ देना और अपनी उपस्थिति द्वारा उनकी गरिमा को वापस लाना। उनकी नज़रें बीती हुई अतीत पर सवाल या न्याय नहीं करती, बल्कि इंसान और उसकी गरिमा को पहचानती हैं। वेरबुम्दे मिशनरी फ्रेटर्निटी की धर्म बहन सिस्टर लुसिया हेरेरियास को इन महिलाओं के साथ ईश्वजन साझा करने में ओबलेट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। वे बतलाती हैं, जब उन्होंने मुझे परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाया, जो वेश्यावृत्ति में पड़ी महिलाओं के साथ काम करती हैं, तो मैं इस अवसर के लिए खुश हो गए, क्योंकि इसके द्वारा मुझे लाचार लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने का अवसर मिला। सिस्टर लुसिया का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करता है कि बहुत मुश्किल हालत में भी मनुष्य का दिल ईश्वर के लिए खुला हो सकता है। वे इन महिलाओं के ईश्वचन के प्रति खुलेपन से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि जिस मुश्किल हालात में वे जी रही हैं, उनके बीच भी ईश्वर की दया और उनका सामीप्य उन्हें मिल सकता है। ओबलेट धर्म बहनें उन जगहों पर महिलाओं के करीब आती हैं जहां वे काम करती हैं, और उन्हें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक मदद और विश्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे सभी अपने व्यक्तिगत सफर पर हैं, उनमें से कुछ प्रशिक्षण पूरी कर लेती हैं और जीने के दूसरे तरीके ढूंढ लेती हैं। कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन ओबलेट की धर्म बहनों में उन्हें हमेशा स्वागत और मदद की जगह मिलती है, जहां वे एक व्यक्ति के रूप में अपनी गरिमा खोज सकती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। इस प्रक्रिया में ईश्वर का वचन आशा और आंतरिक स्वास्थ्य का जरिया बन जाता है। सिस्टर लुसिया कहती हैं, मैं यह देखकर प्रभावित और खुश होती हूँ कि कैसे ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं और उन्हें आशा देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। सिस्टर लुसिया एक खास अनुभव बताती हैं जो इस सफर को दिखाता है। एक बार क्रिसमस की तैयारी के लिए एक आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्होंने धीरे धीरे एक औरत को ईश्वचन पढ़कर सुनाया जो पढ़ नहीं सकती थी। अंत में उसने उससे पूछा कि बेतलेहम की चरनी के सामने खड़े होकर आपने क्या देखा या महसूस किया, तो उसने बताया कि कुंवारी मरियम को देखा जो यीशु को अपने गोद में ली हुई थी और कह रही थी कि वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यह अनुभव यीशु की उन बातों की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के राज्य में वेश्याएं एवं नाकेदार पहले प्रवेश करेंगे। कई लोगों ने बचपन से ही बहुत मुश्किल जीवन जिया है। कुछ मामलों में उनके अपने ही माता पिता या दादा दादी ने उन्हें किशोर अवस्था में वेश्या बनने के लिए मजबूर किया। सिस्टर लुसिया भाषा और नजर के महत्व पर बहुत ध्यान देती हैं। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि धर्म बहने उन्हें वेश्या या यौन कर्मी नहीं बल्कि वेश्यावृत्ति में पड़ी औरतें कहती हैं। वे वेश्य नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गई हैं जिससे वे छोड़ नहीं सकती, भले ही रास्ता लंबा और मुश्किल हो। इस सफर में प्रार्थना करने सीखना और यह जानना कि ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने की ताकत एवं हिम्मत देता है। ओबलेट धर्म बहनों और लुसिया हेरेरियस की मिली जुली कोशिशें इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक ऐसी कलीसिया होने का क्या मतलब है जो आगे बढ़ती है, एक ऐसी कलीसिया जो सुरक्षित जगहों का इंतजार नहीं करती बल्कि इंसान के दायरे में चलने की जोखिम उठाती है।
एक ऐसी कलीसिया जो मानती है कि दया एक ठोस अनुभव है जो इशारों, शब्दों, नजरों में दिखती है, एक नजर जो परिवर्तन ला सकती है। वह भोली नहीं होती, वह असलियत की कठोरता को नहीं नकारती है या दुख को रोमांटिक नहीं बनाती। या एक ऐसी नज़र है जो दर्द को पहचानती है लेकिन उसमें फंसी नहीं रहती। यह एक ऐसी नज़र है जो उन अवसरों को देखती है जहां दूसरे सिर्फ नाकामी देखते हैं। यह यीशु की नज़र है जो सड़कों पर चलते हैं उन लोगों के माध्यम से जो उनकी तरह देखने की हिम्मत करते हैं। आज हमारे समाज को भी ऐसे ही नज़रों से देखने की ज़रूरत है। यह एक ऐसी नज़र है जो लोगों को उनके अतीत, उनकी गलतियों या उनके हालत तक सीमित नहीं करती बल्कि मानव गरिमा को पहचानती है उन जगहों पर भी जहां यह मिट गई सी लगती है। यह एक ऐसी नज़र है जो गिरे हुओं को उठने और आगे बढ़ने में मदद करती है जिससे समाज आगे बढ़ता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ऑबलेट धर्म बहनों के मिशन के बारे सुन रहे थे जिसको सिस्टर सुसी वेरा ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका घर जमाई। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओ, हमारे समाज में आम तौर पर पत्नी को विवाह के बाद पति के घर जाना होता है। इसके विपरीत किसी कारणवश कोई पति अपनी पत्नी के माता पिता के घर में रहता है, यानी ससुराल में रहता है, तो उसे सामाजिक ताने बाने में कई बार अजीब नजरों से देखा जाता है। कई बार घर जमाई को ससुराल में वह मान सम्मान नहीं मिलता जो एक सामान्य पति को अपने घर में मिलता है। लोगों की यह सोच बन जाती है कि वह आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर है। पति पर हमेशा यह साबित करने का दबाव रहता है कि वह घर के सदस्यों के लिए बोझ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को समझता है। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाते हैं, उसका मान सम्मान घटता जाता है। अंत में घर के नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आज की नाटिका में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए घर जमाई आनंद राज ने क्या किया, आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका घर जमाई।
1: डार्लिंग, सो गए क्या? अरे चलो उठो। अरे जरा मेरे पैर दबा दो।
2: अरे वाह प्रियतमा, किसी पार्टी में डांस तुम करो और तुम्हारे पैर मैं दबाऊं? अरे मैं से दूर रहो, तेरा नींद आ रही है मुझे।
1: ओहो क्यों, आज दबाने में छोटे हो जाओगे? पिछले 10 सालों से मेरे पैर दबा रहे हो। अरे
2: क्या कह रही हो, पैर दबा रहे हैं? मैंने गलती कर दी है? तुम्हारा गला दबाना चाहिए था।
1: अच्छा क्या कहा, जरा फिर से कहना।
2: फिर से क्या कहना, कुछ नहीं अरुंधति, ये जो मन की डकार थी ना वो निकल गई।
1: सुनो जी।
2: क्या जी?
1: एक बात बता देती हूँ।
2: क्या?
1: तुम इस घर में घर जमाई हो, घर जमाई की हैसियत से रहो।
2: अरे मेरी हैसियत है कहाँ, तुम लोगों की हैवानियत है।
1: क्या कहा?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
3: जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: अरे वो जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: बाजार से सब्जी लेकर आए?
2: अरे सासू माँ, मैं सब्जी बाद में ले आऊं तो चलेगा? मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है।
3: क्यों?
2: क्या
3: जमाई राजा?
2: हाँ जी।
3: तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या? जाओ पहले सब्जी लेकर आओ, मेरा रोहन अभी आता ही होगा, उसके लिए अभी तुम्हें खाना भी बनाना है। काम कुछ करते नहीं और मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं।
2: अजीब औरत है, यह एटम बम है, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। चलो पहले सब्जी लेकर ही आते हैं।
1: सुनो जी।
2: हाँ जी।
1: एक काम करोगे?
2: क्या?
1: आज हम सब सहेलियाँ फिल्म देखने जा रही हैं।
2: अच्छा।
1: तुम हम सबके लिए टिकट ला दो ना।
2: नहीं नहीं, मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, अभी तुम्हारी माँ के ये सैंडविच बनाने।
1: तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मना किया?
2: अरे हिम्मत देखी कहाँ है।
1: क्या कहा, फिर से कहना तो।
2: अरे मेरा मतलब था हिम्मत वाला, वो जितेंद्र की फिल्म समझती हो ना। अरे समझती तो कुछ है नहीं, बस लग जाती हो बड़बड़ाने।
1: ए जी।
2: हाँ जी।
1: सुनो ना।
2: क्या?
1: मेरा ये काम कर दो प्लीज।
2: क्या?
3: ए जमाई राजा।
2: हाँ जी।
3: ए जमाई बाबू।
2: अरे हाँ जी।
3: बाबू कहाँ जा रहे हो?
2: अरे कहीं नहीं सासू माँ, अरुंधति को फिल्म दिखाना है ना, तो टिकट लेने जा रहे हैं रावड़ी राठौर के।
3: अच्छा ठीक है ठीक है। और सुनो।
2: क्या?
3: मेरा भी एक काम कर देना।
2: कौन सा?
3: वो सामने एक लॉन्ड्री की दुकान है ना।
2: लॉन्ड्री की?
3: हाँ, वहाँ से मेरी साड़ियाँ ले आना।
2: ठीक है सासू माँ, अब मैं चलूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ।
4: और क्या हाल है आनंद राज, क्या यहाँ तुम फिल्म देखने आओ?
2: अरे काय के राज यार, अब अपनी बीवी के लिए टिकट लेने आए हैं और क्या।
4: यार आनंद राज।
2: हाँ बोल।
4: तू ये शादी करके खुश नहीं लग रहा है? पर तूने तो अपने पसंद की लड़की से शादी की थी, क्यों, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या?
5: यार विवेक, अब घर जवाई बनने के बाद स्थिति बहुत बेकार हो जाती है यार।
4: हाँ।
5: अब क्या बताएं, नाम है आनंद राज और ना आनंद है और ना राज।
4: अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैंने तुझे मना किया था घर जमाई बनने से।
5: हाँ यार विवेक, यार क्या बतावे, अब लालच के चक्कर में है ना, अपनी तो पूरी इज्जत चकना चूर हो गई। अब पछतावा बहुत हो रहा है, क्या करें।
4: देखो आनंद,
5: हाँ
4: मैं दोस्त हूँ तुम्हारा।
5: हाँ।
4: इसलिए समझा रहा हूँ।
5: क्या,
4: अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जियो यार, मर्द बनो, क्या कर रहे हो तुम, तेरी कोई खुददारी भी है कि नहीं?
5: अरे यार क्या खुददारी, अब तो मैं छोड़ दूं, क्या करूं क्या यार, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा यार। अरुंधति और जो वो है ना, क्या नाम है उसका,
4: फूलन देवी।
5: हाँ हाँ, उसी ने भड़का के रखा उन दोनों का इस चक्कर में ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या।
4: अरे तो नौकरी कर लो ना भैया कहीं।
5: अरे कहाँ नौकरी कर ले यार, तू तो कह रहा नौकरी कर ले, ऐसी लगती कहीं नौकरी।
4: तुझे आज ही कोई डिसीजन लेना होगा, आखिर यार मैं तेरा दोस्त हूँ, जल्दी से कोई निर्णय ले ले, समझा रहा हूँ तुझे मैं।
5: हाँ यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो अभी फिर हम चलें क्या?
4: हाँ चलो फिर, ठीक है।
6: पापा आप ये सूटकेस कहाँ लेके जा रहे हो?
5: अरे क्या बताएं बेटा, कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, अब अपने घर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
6: क्यों पापा, फिर मम्मी और मैं आपके बिना कैसे रहेंगे?
5: तो तुम भी चलो मेरे साथ।
6: ठीक है, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, पापा जा रहे हैं।
1: ये क्या आनंद, तुम कहीं जा रहे हो और तुमने ये सूटकेस क्यों पैक किया है?
5: देखो अरुंधति, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, सो सुन लो, मेरी इज्जत के जितने कचरे होने थे ना सब हो गए, बस अब बर्दाश्त के बाहर है।
1: अरे
5: हाँ, मैंने एक भूल की है, सासू माँ की बात मान के घर जमाई बना, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अरे अब नहीं रहूंगा यार, घर में जा रहा हूँ।
1: देखो आनंद, प्लीज प्लीज मत
5: अरे,
1: जाओ।
5: अरे छोड़ मेरा हाथ,
1: हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे आनंद, मत जाओ ना।
5: कैसे रहेंगे, तो तुम भी चलो मेरे साथ, मैंने कब मना किया, पर ये इसके साथ नहीं रहूंगा फूलन के।
1: लेकिन माँ क्या कहेगी, बस यही सोच रही हूँ।
5: बस तुम सोचती ही रहना, तुम्हें मेरी तो कोई फिकर और कदर है नहीं, मैं जा रहा हूँ, समझ गई, तुम सोचो घर में।
1: देखो देखो मत जाओ प्लीज, माँ, ओ माँ जल्दी आओ, देखो देखो ये जा रहे हैं माँ।
3: अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है, और ये जमाई राजा कहाँ जा रहे हैं? तुमको मेरी शर्त याद है कि नहीं जमाई राजा, एक बार इस घर से जाओगे तो मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, समझे?
5: ए सासू माँ, बहुत हो गया, आज मैं सारी जंजीरें तोड़ रहा हूँ, और रही शर्त की बात, तो भार में गई तुम्हारी शर्त।
3: अच्छा
5: शर्त, अनुदिति चल रही है कि नहीं?
3: अरे तुझे जाना है तो तू जा, मेरी बेटी को ऐश और आराम की जिंदगी पसंद है, तू क्या दे पाएगा उसे, आया बड़ा धौंस जमाने के लिए।
1: माँ बस करो, बहुत हो गया इनका अपमान, अब मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। पत्नी का असली घर पिया का घर होता है, रही ऐश और आराम की बात, तो इनके बिना कैसा ऐश और कैसा आराम। सुनो जी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ।
5: देखो सासू माँ, एक बात ध्यान से सुन ले, आज ही मेरी जिंदगी की सही शुरुआत है, समझ गई है, उसमें जंजीरें हाथ मत डाल, और हमें आशीर्वाद दे।
1: हाँ माँ, हमें अच्छे तरीके से विदा करो और हमें खुशी के साथ जाने दो।
3: ठीक है बेटा, जाओ अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लो, जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
0: घर जमाई, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, भवानी कौल, रवीना रावल और विजय पंडित। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलट धर्म बहनों के मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी एवं पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा और धनी आबादी वाला शहर है, जो अपने प्राचीन इतिहास, अनूठी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद इस महानगर में कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे सड़कों पर भेदभाव, गरीबी, अलग थलग किया जाना और व्यवस्थित हिंसा, जो आबादी के एक बड़े हिस्से पर असर डालती है। जहां सड़कों पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति में पड़ गई हैं। इनमें से हर एक की अपनी मुश्किल कहानियाँ हैं, जैसे हिंसा का शिकार होना, अकेले छोड़ दिया जाना, अवसर की कमी और कम उम्र में ही परिवार से अलग कर दिया जाना। इन महिलाओं की मदद करने के विचार से परम पावन उद्धारक की ओबलट धर्म बहनें दिन और रात अपने मिशन की जोखिम उठाते हुए सड़कों पर निकलती हैं। उनका काम है साथ चलना, सुनना, साथ देना और अपनी उपस्थिति द्वारा उनकी गरिमा को वापस लाना। उनकी नजरें बीती हुई अतीत पर सवाल या न्याय नहीं करती, बल्कि इंसान और उसकी गरिमा को पहचानती हैं। वेरबुम दे मिशनरी फ्रेटर्निटी की धर्म बहन सिस्टर लुसिया हेरेरियास को इन महिलाओं के साथ ईश्वजन साझा करने में ओबलट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। वे बतलाती हैं, जब उन्होंने मुझे परम पावन उद्धारक की ओबलट धर्म बहनों के साथ मिलकर काम करने के लिए बुलाया, जो वेश्यावृत्ति में पड़ी महिलाओं के साथ काम करती हैं, तो मैं इस अवसर के लिए खुश हो गए, क्योंकि इसके द्वारा मुझे लाचार लोगों को ईश्वर का वचन सुनाने का अवसर मिला। सिस्टर लुसिया का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करता है कि बहुत मुश्किल हालत में भी मनुष्य का दिल ईश्वर के लिए खुला हो सकता है। वे इन महिलाओं के ईश्वरचन के प्रति खुलेपन से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि जिस मुश्किल हालात में वे जी रही हैं, उनके बीच भी ईश्वर की दया और उनका सामीप्य उन्हें मिल सकता है। ओबलट धर्म बहनें उन जगहों पर महिलाओं के करीब आती हैं जहां वे काम करती हैं और उन्हें रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक मदद और विश्वास प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे सभी अपने व्यक्तिगत सफर पर हैं, उनमें से कुछ प्रशिक्षण पूरी कर लेती हैं और जीने के दूसरे तरीके ढूंढ लेती हैं। कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन ओबलट की धर्म बहनों में उन्हें हमेशा स्वागत और मदद की जगह मिलती है, जहां वे एक व्यक्ति के रूप में अपनी गरिमा खोज सकती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। इस प्रक्रिया में ईश्वर का वचन आशा और आंतरिक स्वास्थ्य का जरिया बन जाता है। सिस्टर लुसिया कहती हैं, मैं यह देखकर प्रभावित और खुश होती हूँ कि कैसे ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं और उन्हें आशा देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। सिस्टर लुसिया एक खास अनुभव बताती हैं जो इस सफर को दिखाता है। एक बार क्रिसमस की तैयारी के लिए एक आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्होंने धीरे धीरे एक औरत को ईश्वचन पढ़कर सुनाया जो पढ़ नहीं सकती थी। अंत में उसने उससे पूछा कि बेतलेहम की चरनी के सामने खड़े होकर आपने क्या देखा या महसूस किया, तो उसने बताया कि कुंवारी मरियम को देखा जो यीशु को अपने गोद में ली हुई थी और कह रही थी कि वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यह अनुभव यीशु की उन बातों की याद दिलाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के राज्य में वेश्याएं एवं नाकेदार पहले प्रवेश करेंगे। कई लोगों ने बचपन से ही बहुत मुश्किल जीवन जिया है। कुछ मामलों में उनके अपने ही माता पिता या दादा दादी ने उन्हें किशोरावस्था में वेश्य बनने के लिए मजबूर किया। सिस्टर लुसिया भाषा और नजर के महत्व पर बहुत ध्यान देती हैं। वे कहती हैं, मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि धर्म बहने उन्हें वेश्या या यौन कर्मी नहीं, बल्कि वेश्यावृत्ति में पड़ी औरतें कहती हैं। वे वेश्य नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी परिस्थिति में पड़ गई हैं जिससे वे छोड़ नहीं सकती, भले ही रास्ता लंबा और मुश्किल हो। इस सफर में प्रार्थना करने सीखना और यह जानना कि ईश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने की ताकत एवं हिम्मत देता है। ओबलट धर्म बहनों और लुसिया हेरेरियास की मिली जुली कोशिशें इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक ऐसी कलीसिया होने का क्या मतलब है जो आगे बढ़ती है। एक ऐसी कलीसिया जो सुरक्षित जगहों का इंतजार नहीं करती, बल्कि इंसान के दायरे में चलने की जोखिम उठाती है।
एक ऐसी कलीसिया जो मानती है कि दया एक ठोस अनुभव है जो इशारों, शब्दों, नजरों में दिखती है, एक नजर जो परिवर्तन ला सकती है। वह भोली नहीं होती, वह असलियत की कठोरता को नहीं नकारती है या दुख को रोमांटिक नहीं बनाती। या एक ऐसी नज़र है जो दर्द को पहचानती है लेकिन उसमें फंसी नहीं रहती। यह एक ऐसी नज़र है जो उन अवसरों को देखती है जहां दूसरे सिर्फ नाकामी देखते हैं। यह यीशु की नज़र है जो सड़कों पर चलते हैं उन लोगों के माध्यम से जो उनकी तरह देखने की हिम्मत करते हैं। आज हमारे समाज को भी ऐसे ही नज़रों से देखने की ज़रूरत है। यह एक ऐसी नज़र है जो लोगों को उनके अतीत, उनकी गलतियों या उनके हालत तक सीमित नहीं करती बल्कि मानव गरिमा को पहचानती है उन जगहों पर भी जहां यह मिट गई सी लगती है। यह एक ऐसी नज़र है जो गिरे हुओं को उठने और आगे बढ़ने में मदद करती है जिससे समाज आगे बढ़ता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत परम पावन उद्धारक की ओबलेट धर्म बहनों के मिशन के बारे सुन रहे थे जिसको सिस्टर सुसी वेरा ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका घर जमाई। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओ, हमारे समाज में आम तौर पर पत्नी को विवाह के बाद पति के घर जाना होता है। इसके विपरीत किसी कारणवश कोई पति अपनी पत्नी के माता पिता के घर में रहता है यानी ससुराल में रहता है तो उसे सामाजिक ताने बाने में कई बार अजीब नजरों से देखा जाता है। कई बार घर जमाई को ससुराल में वह मान सम्मान नहीं मिलता जो एक सामान्य पति को अपने घर में मिलता है। लोगों की यह सोच बन जाती है कि वह आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर है। पति पर हमेशा यह साबित करने का दबाव रहता है कि वह घर के सदस्यों के लिए बोझ नहीं है बल्कि जिम्मेदारियों को समझता है। ज्यों ज्यों दिन गुजरते जाते हैं उसका मान सम्मान घटता जाता है। अंत में घर के नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आज की नाटिका में अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए घर जमाई आनंद राज ने क्या किया, आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका घर जमाई।
1: डार्लिंग, सो गए क्या? अरे चलो उठो। अरे जरा मेरे पैर दबा दो।
2: अरे वाह प्रियतमा, किसी पार्टी में डांस तुम करो और तुम्हारे पैर मैं दबाऊं? अरे मैं से दूर रहो, तेरा नींद आ रही है मुझे।
1: ओहो क्यों, आज दबाने में छोटे हो जाओगे? पिछले 10 सालों से मेरे पैर दबा रहे हो। अरे
3: क्या कह रही हो, पैर दबा रहे हैं? मैंने गलती कर दी हैं? तुम्हारा गला दबाना चाहिए था।
1: अच्छा क्या कहा, जरा फिर से कहना।
3: फिर से क्या कहना, कुछ नहीं अरुंधति, ये जो मन की डकार थी ना वो निकल गई।
1: सुनो जी।
3: क्या जी?
1: एक बात बता देती हूँ।
3: क्या?
1: तुम इस घर में घर जमाई हो, घर जमाई की हैसियत से रहो।
2: अरे मेरी हैसियत है कहाँ, तुम लोगों की हैवानियत है।
1: क्या कहा?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
4: जमाई राजा।
3: हाँ जी।
4: अरे वो जमाई राजा।
3: हाँ जी।
4: बाजार से सब्जी लेकर आए?
3: अरे सासू माँ, मैं सब्जी बाद में ले आऊं तो चलेगा? मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है।
4: क्या?
3: क्या
4: जमाई राजा?
3: हाँ जी।
4: तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या? जाओ पहले सब्जी लेकर आओ, मेरा रोहन अभी आता ही होगा, उसके लिए अभी तुम्हें खाना भी बनाना है। काम कुछ करते नहीं और मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं।
2: अजीब औरत है, ये एटम बम है, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। चलो पहले सब्जी लेकर ही आते।
1: सुनो जी।
3: हाँ जी।
1: एक काम करोगे?
3: क्या?
1: आज हम सब सहेलियाँ फिल्म देखने जा रही हैं।
2: अच्छा,
1: तुम हम सबके लिए टिकट ला दो ना।
3: नहीं नहीं, मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, अभी तुम्हारी माँ के ये सैंडविच बनाने।
1: तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मना किया?
3: अरे हिम्मत देखी कहाँ है।
1: क्या कहा, फिर से कहना तो।
2: अरे मेरा मतलब था हिम्मत वाला, वो जितेंद्र की फिल्म समझती हो ना। अरे समझती तो कुछ है नहीं, बस लग जाती हो बड़बड़ाने।
1: ए जी।
3: हाँ जी।
1: सुनो ना।
3: क्या?
1: मेरा ये काम कर दो प्लीज।
2: क्या?
4: ए जमाई राजा।
3: हाँ जी।
4: ए जमाई बाबू।
3: अरे हाँ जी।
4: बाबू कहाँ जा रहे हो?
3: अरे कहीं नहीं सासू माँ, अरुंधति को फिल्म दिखाना है ना, तो टिकट लेने जा रहे हैं रावड़ी राठौर के।
4: अच्छा ठीक है ठीक है। और सुनो।
3: क्या?
4: मेरा भी एक काम कर देना।
3: कौन सा?
4: वो सामने एक लॉन्ड्री की दुकान है ना।
3: लॉन्ड्री की?
4: हाँ, वहाँ से मेरी साड़ियाँ ले आना।
3: ठीक है सासू माँ, अब मैं चलूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ।
5: और क्या हाल है आनंद राज, क्या यहाँ तुम फिल्म देखने आओ?
3: अरे काय के राज यार, अब अपनी बीवी के लिए टिकट लेने आए हैं और क्या।
5: यार आनंद राज।
3: हाँ बोल।
5: तू ये शादी करके खुश नहीं लग रहा है, पर तूने तो अपने पसंद की लड़की से शादी की थी, क्यों, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या?
3: यार विवेक, अब घर जवाई बनने के बाद स्थिति बहुत बेकार हो जाती है यार।
5: हाँ।
3: अब क्या बताएं, नाम है आनंद राज और ना आनंद है और ना राज।
5: अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैंने तुझे मना किया था घर जमाई बनने से।
3: हाँ यार विवेक, यार क्या बतावे, अब लालच के चक्कर में है ना, अपनी तो पूरी इज्जत चकना चूर हो गई। अब पछतावा बहुत हो रहा है, क्या करें।
5: देखो आनंद,
3: हाँ
5: मैं दोस्त हूँ तुम्हारा।
3: हाँ।
5: इसलिए समझा रहा हूँ।
3: क्या?
5: अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जियो यार, मर्द बनो। क्या कर रहे हो तुम, तेरी कोई खुददारी भी है कि नहीं?
3: अरे यार क्या खुददारी, अब तो मैं छोड़ दूं, क्या करूं क्या यार, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा यार। अरुंधति और जो वो है ना, क्या नाम है उसका,
5: फूलन देवी।
3: हाँ हाँ, उसी ने भड़का के रखा उन दोनों का इस चक्कर में ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या।
5: अरे तो नौकरी कर लो ना भैया कहीं।
3: अरे कहाँ नौकरी कर ले यार, तू तो कह रहा नौकरी कर ले, ऐसी लगती कहीं नौकरी।
5: तुझे आज ही कोई डिसीजन लेना होगा, आखिर यार मैं तेरा दोस्त हूँ, जल्दी से कोई निर्णय ले ले, समझा रहा हूँ तुझे मैं।
3: हाँ यार अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो अभी फिर हम चलें क्या?
5: हाँ चलो फिर, ठीक है।
6: पापा आप ये सूटकेस कहाँ लेके जा रहे हो?
3: अरे क्या बताएं बेटा, कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, अब अपने घर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
6: क्यों पापा, फिर मम्मी और मैं आपके बिना कैसे रहेंगे?
3: तो तुम भी चलो मेरे साथ।
6: ठीक है, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, ओ मम्मी,

0: तो तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने कब मना किया है, पर ये इसके साथ नहीं रहूंगा फूलन के।
1: लेकिन माँ क्या कहेगी? बस यही सोच रही हूँ।
0: बस तुम सोचती ही रहना, तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र और कदर है नहीं। मैं जा रहा हूं, समझ गई? तुम सोचो घर में।
1: देखो देखो मत जाओ प्लीज। माँ, ओ माँ जल्दी आओ, देखो देखो ये जा रहे हैं माँ।
2: अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? और ये जमाई राजा कहाँ जा रहे हैं? तुमको मेरी शर्त याद है कि नहीं जमाई राजा? एक बार इस घर से जाओगे तो मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, समझे?
0: ए सासू माँ, बहुत हो गया। आज मैं सारी जंजीरें तोड़ रहा हूं, और रही शर्त की बात, तो भाड़ में गई तुम्हारी शर्त।
2: अच्छा
0: शर्त अनुदिति, चल रही है कि नहीं?
2: अरे तुझे जाना है तो तू जा, मेरी बेटी को ऐश और आराम की जिंदगी पसंद है, तू क्या दे पाएगा उसे? आया बड़ा धौंस जमाने के लिए।
1: बस करो, बहुत हो गया इनका अपमान। अब मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। पत्नी का असली घर पिया का घर होता है, रही ऐश और आराम की बात तो इनके बिना कैसा ऐश और कैसा आराम। सुनो जी, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ।
0: देखो सासू माँ, एक बात ध्यान से सुन ले, आज ही मेरी जिंदगी की सही शुरुआत है, समझ गई? हैं? उसमें जंजीरें हाथ मत डाल और हमें आशीर्वाद दे।
1: हाँ माँ, हमें अच्छे तरीके से विदा करो और हमें खुशी के साथ जाने दो।
2: ठीक है बेटा, जाओ अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लो। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं।
3: घर जमाई, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संदीप दुबे, भवानी कौल, रवीना रावल और विजय पंडित। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।